0: जो परिचय दे रहा मिलाई फिर तार्थ कर
1: मैं माया हूँ अपने इच्छा ले आओ छु अन्य अपने इच्छा ले जान छु